अहले खुदा बे कौन तेरा शैतानी सारा दोस्वामी अहले गोपाल तब दोस्त वो हलाद खुदा निकाले दोस्वा दोस्वा दोस्वा दोस्वा दोस्वा दोस्वा दोस्वा दोस्वा दोस्वा